0: वाले प्रसाद और आकर न दा
1: जब मैं तू आए होने को हाय
0: मुकदमा क्यों
1: सीधा गई बार अब देते नहीं फुट
0: लगता ओया आगे न देखिए ना कि हिंदी है हुए
1: मेरे निसिया के बेबी सावला रंग देख तुझको भूली है सांसे मेरी
0: हदीसी है मेरे के ना हदीसी